0: असम के लिए, असम की अगली पीढ़ी के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल में भी ऐसी स्थिति है जो दिख रहा है, ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत होगी।
1: ये हमारे देख रहे हैं कि एक विशेष विधानसभा टीटाबोर विधानसभा में काउंटिंग बहुत स्लो जा रहा है, और वो बात हम अंदर अभी कह के आए हैं कि ऐसा क्यों है कि टीटाबोर विधानसभा में काउंटिंग स्लो है, तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको थोड़ा
2: तत्पर आप तो लीड कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि थोड़ा
1: ये तो हर राउंड में तो होता ही है कि एक एक राउंड ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक है। जो अंतिम नतीजे हैं उस तक हमें रोकना चाहिए। एब्सोल्युटली।
3: Well, for now, it looks like a hat-trick for the BJP and a win for a newbie Vijay in Tamil Nadu, and an upset for Mamata Banerjee in West Bengal. We'll get you all the details on the other side of a very short break on our continuous coverage of the assembly elections in India. Stay tuned.

और अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में पांच राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रेसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्दी यहां सामने आ रहे हैं।

0: to make the provisional announcement and declare the winner of the chief minister's post in West Bengal. Once again, there's one seat that will be contested again, or repolling will be conducted on May 21st. And these are five assembly elections that are taking place in India at this moment. And BJP is taking a lead in at least three of them. So let's just wait to hear what the Prime Minister will say. Let's just listen in for a moment.
1: राहुल गांधी की है और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है और आज मैं कहता हूं जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम अपमान करने का काम किया है जनता ने उसका सीख सिखाने का जनता ने सबक सिखाने का काम किया है और मैं आज के दिन अपने प्रिय नेता और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं आप नेतृत्व कीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी जनता ने उनको परास्त किया है आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते चूंकि हमारे नेता हर समय हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे इसके लिए प्रयासरत रहेंगे भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम भारत माता की भारत माता की आज का दिन एक ऐतिहासिक शुभ दिवस है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली पर आज इतिहास रचा गया है
0: सो बिफोर आई कंटिन्यू आई नीड टू मेक A few corrections. The person who was talking a few minutes ago, he's the BJP president. His name is Nitin Nabin. He's not the person who's contesting for the West Bengal chief ministerial election against Mamata Banerjee. His name is Duvendu, and he's the one who's going to take over from Mamata Banerjee. Now let's listen in to the Prime Minister. He's about to address party workers and members of the BJP at the BJP headquarters in New Delhi.
2: भारत माता की भारत माता की भारत माता की जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां हैं वहीं से सुन लीजिए किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए भारत माता की भारत माता की आज का ये दिन ऐतिहासिक है अभूतपूर्व है

वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों,
जय पराजय, लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। लेकिन पांच प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है, ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से, बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन

भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है, हैट्रिक तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोड़ोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।

0: Welcome back and thank you for staying with us. We are live on We On Wilders One. Time now for Pulse. I'm Eric Njoka, the headlines.
1: बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इट्स टाइम फॉर चेंज नॉट रिवेंज इन बंगाल इन हिज फर्स्ट मैसेज टू ममता बनर्जीज तृणमूल कांग्रेस आफ्टर बीजेपी स्वेप्ट हिस्टोरिक विन इन वेस्ट बंगाल. In a massive upset in West Bengal, BJP's Shubhendu Adhikari defeats TMC Supremo Mamata Banerjee in a home turf of. UAE Emir Al Jaira says at least three Indians injured after an Iranian drone sparked a fire at an oil facility. South Korean Foreign Ministry says there was a fire and an explosion on a vessel operated by South Korean shipper in the Strait of Hormuz.